हाले चार दिन ताई मिले की फायदा कम कर के रेविले कि ना लेके जाना पैसा तेला मौत दे एग्जाम बता फील चार दिन ताई मिले कला है कला जाना गल स्ट्रीट कि नू पता की ये लिखा विच लिखा अनफोल्ड खमुरे हंदा वी